मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बुलवाएगी, जूते मुझे खिलाएगी, एक दिन ये बूढ़ी मेरी जान लेके जाएगी, सास मेरी आएगी। अबे रफीक साहब ने एक गीत गायलू छे, शादी गीत छे, के बाबुल की दुआए लेते हैं ना, ऊपर एक मिमिक्री छे, आशिक की दुआए लेती जा जाती

मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे आज की मेरी प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि आज के सभी गाने पुराने तो हैं, लेकिन एक नई आवाज में हैं। वो आवाज जिसने YouTube पर जादू बिखेर दिया, वो आवाज जिसके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं, वो आवाज जिसे आप बखूबी जानते हैं, वो जिसने हिंदी फिल्मों के गानों को बड़ी खूबसूरती से अपने अंदाज में पेश किया और बॉलीवुड में धत तेरी की, इश्क बुलावा, फकीरा जैसे गानों से अपनी वर्सिटैलिटी भी प्रूव की। मैं बात कर रही हूँ सिंगर सनम पुरी की, जिनके बैंड का नाम भी है सनम। अब देखिए, पर्सनली मुझे इनके गाने कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि सनम पुरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरा इसलिए भी कि जिस तरह से ये 60s, 70s, 80s के गानों को रिक्रिएट करते हैं, जो उसकी ओरिजिनैलिटी थी, जो सोल है गाने की, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर म्यूजिक। वैसे आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि सनम पुरी, जो कि सनम बैंड के लीड सिंगर हैं, उन्हें म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा था कि वो एक्टिंग भी करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने फ्री स्टाइल डांसिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने म्यूजिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया। वैसे जानते हैं आप, सनम पुरी के बैंड का नाम पहले सनम नहीं, कुछ और था। बताऊंगी इस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का शो उनके पहले सुपर डुपर हिट कवर सॉन्ग के साथ, जो कि था लग जा गले। बड़ा ही प्यारा वर्जन है, सुनिएगा।

ना कोई कहानी जरूर होती है। सनम मैन की कहानी ये है कि 2003 में वेंकी जो कि बेस गिटारिस्ट है और समर जो कि लिरिसिस्ट या लीड गिटारिस्ट या कंपोजर सभी चीज़ें हैं, ये दोनों मस्कट में बैचमेट्स हुआ करते थे। दोनों को ही म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए दोनों ने एक बैंड फॉर्म करने का सोचा, जिसके लिए समर ने अपने छोटे भाई सनम को कॉन्टैक्ट भी किया कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ में एज अ सिंगर। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये स्कूल कॉलेज में जो बैंड्स बनते हैं वो अक्सर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि समय जो है वो सभी लोगों को अपनी अलग अलग राह में अलग अलग दिशा में भेज देता है। सनम और समर दिल्ली चले गए थे, कॉलेज के लिए इंडिया आ गए थे और दिल्ली चले गए थे, और वहीं अपने कॉलेज के रॉक सर्किट्स में बिजी हो गए। सनम पुरी को उनके सिंगिंग के लिए अवार्ड्स भी मिलने लग गए थे। वहीं वेंकी बैंगलोर में बेस प्लेयर थे, बहुत सारे बैंड्स के साथ में वो प्ले किया करते थे। फिर एक कॉलेज के इवेंट के थ्रू वेंकी की मुलाकात केशव से हुई थी। फिर भी ये सभी लोगों का उस समय एक बैंड नहीं बन पाया था, क्योंकि सभी लोग देश के अलग अलग कोने में रह रहे थे। फिर ईयर 2009 में समर और सनम मुंबई आए अपना म्यूजिक करियर बनाने के लिए। 2010 में सनम, केशव और समर ने एक नेशन वाइड पॉप बैंड हंट सुपरस्टार्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसके फाइनल राउंड में वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया। इस हंट में सनमपुरी के बैंड ने द SQS प्रोजेक्ट के नाम से एंट्री ली थी, और जहां 1600 से भी ज़्यादा इंडियन बैंड्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहां द SQS प्रोजेक्ट को विजेता घोषित किया गया, गिविंग द बैंड अ नेम ऑफ SQS सुपरस्टार्स। और कुछ ऐसे उनकी जर्नी शुरू हुई। वैसे उन्होंने अपने बैंड का नाम SQS क्यों रखा था और फिर सनम नाम कैसे मिला, बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनते हैं इसी बैंड का बनाया हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना, वर्जन ऑफ है अपना दिल। तो आवाज

आज के सारे पुराने गानों का कवर वर्जन है। सनम बैंड के बनाए हुए ये गाने जो आप सुन रहे हैं वो सभी मेरे सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे हर बैंड के फॉर्मेशन के पीछे कोई

मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज आप द सनम बैंड के सभी गाने, इनके कवर वर्जन ऑफ सम ऑफ आवर फेवरेट रेट्रो सॉन्ग्स जो सुन रहे हैं। वैसे मैं बात कर रही थी कि कैसे इनके बैंड का नाम पहले द एस क्यू एस प्रोजेक्ट था, वो इसलिए क्योंकि उस समय उनके बैंड में एक और एक मेंबर हुआ करते थे क्यूएश नाम से, तो इसलिए समर, क्यूएश और सनम इनके नाम पर ये एस क्यू एस बना था। लेकिन म्यूजिक हंट के फाइनल्स में जब वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया तब इस नाम का कोई महत्व ही नहीं बचा था क्योंकि अब और भी ज़्यादा बैंड मेंबर्स हो गए थे। फिर भी उन्हें इस नाम के साथ 3 साल तक काम करना पड़ा था क्योंकि एक म्यूजिक कंपनी के साथ उनका 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। लेकिन फिर जब 3 साल पूरे हुए और उनकी मुलाकात उनके बिजनेस मैनेजर बेन थॉमस से हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई अब एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे नया नाम रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों का ये फीडबैक था कि जब भी कुछ वीडियोस या फिर इनके गानों के लिंक्स लोगों को ये फॉरवर्ड करते थे, मैसेज करते थे, तब लिंक पे क्लिक करने से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि एस क्यू एस प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है और इसलिए वो लोग उस लिंक पे क्लिक ही नहीं करते थे। मतलब एस क्यू एस प्रोजेक्ट डिड नॉट रियली फील लाइक अ बैंड्स नेम। तो फिर सनम और उनकी टीम ने बैंड का नाम चेंज करने की ठानी। काफ़ी डिस्कशन और कुछ 200-300 नाम सोचने के बाद, उनके नेम्स का कॉम्बिनेशन सोचने के बाद, और फिर कोई भी नाम ना जमने के बाद, एक दिन एक शो के पहले ये लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और कहीं पर उन्होंने सनम इलेक्ट्रिक लिखा हुआ देखा। और बस क्या था, वो देखते ही इनके दिमाग में आया कि हमारा लीड सिंगर भी सनम है। सनम एक ऐसा नाम है जो कि यूजुअली हिंदी गानों में यूज़ किया जाता है, तो क्यों ना बैंड का नाम भी सनम ही रखा जाए। और कुछ ऐसे सनमपुरी के बैंड का नाम सनम ही बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं सनमपुरी को म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए एनकरेज किसने किया था? बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना। सनमपुरी की आवाज में है, सनम बैंड का ये रिक्रिएटेड वर्जन है। आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ दिस वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग क्योंकि इतने सिंपलिसिटी से इस गाने को इन लोगों ने परफॉर्म किया है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

आज हम सनम बैंड के सभी वो गाने आपको सुना रहे हैं जो कि उन्होंने 70s 80s के मेरे आपके फेवरेट गानों के रिक्रिएशन बनाए हैं, यानी कि कवर वर्जन्स बनाए हैं। और ये सभी खूबसूरत गाने आप मेरे सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे सनम पुरी को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से प्रोफेशनली म्यूजिक सीखा नहीं था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट गिटार, कीबोर्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने खुद ही प्ले करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी अपने स्कूलिंग के बाद सनम दिल्ली में रहे थे 7 सालों तक, और उसके बाद जब वो मुंबई आए तब जाकर उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली लेना शुरू किया। पर एक प्रॉब्लम थी सनम पुरी के साथ, जिसके बारे में वो खुद बताते हैं कि पहले ना वो सिर्फ गाने गाते थे लेकिन उन गानों को महसूस नहीं कर पाते थे, गानों के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट ही वॉजन्ट टू कम्फर्टेबल विद म्यूजिक, क्योंकि वो बड़े शाय किस्म के थे और उन्हें ये आइडिया भी नहीं जमता था कि वो किसी और के कंपोज किए हुए गाने गाएं। सनम चाहते थे कि वो खुद ही गाने लिखें, कंपोज करें और गाएं, तब जा करके शायद वो गाने को फील कर पाएंगे। इसीलिए उनका प्लान प्लेबैक सिंगिंग करने का था नहीं, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बनाना चाहते थे और अपने बैंड के साथ मिलकर के, इसलिए उन्होंने खुद ही इन गानों के ऊपर वीडियोस बनाने का भी तय किया। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच के रखा था और उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो ही गई। उनके गाने जैसे धत्तेरी की और इश्क बुलावा बड़े हिट बन गए। कैसे मिला था सनम को इन सॉन्ग्स को गाने का मौका, ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ आखिर आई कैसे, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सनम पुरी का अगला गाना सुनाते हैं आपको, 90s का सबसे रोमांटिक गाना सनम के अंदाज में। स्टे ट्यून्ड।

मैं हूँ रुचि आपके साथ। जानते हैं, सनमपुरी के जो मैनेजर हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर के भी मैनेजर रह चुके हैं, और उन्होंने ही सनम की मुलाकात विशाल शेखर से करवाई। और कुछ ऐसे विशाल शेखर ने सनम को अप्रोच किया कि वो आए और आकर के धत तेरी की गाने को गाएं। लेकिन ये गाना जो था वो काफी आसान था, इसलिए सनम ने हाँ भी कह दिया और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया। जब ये गाना इतना अच्छा चल गया, हिट हो गया, तो विशाल शेखर ने सोचा कि इश्क बुलावा जो सॉन्ग है उसके लिए भी सनम को बुलाया जाए। इनिशियली सनम को लगा कि ये गाना भी धत तेरी की सॉन्ग की तरह ही होगा, यानी कि बस कुछ ही देर में निपट जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये गाना काफ़ी डिफिकल्ट निकला, लेकिन सनम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस गाने को रिकॉर्ड किया। और जब ये गाना रिलीज हुआ तब तो मानो कि पूरी किस्मत ही पलट गई सनमपुरी की। ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया और इसी गाने से सनमपुरी ने हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और सभी लोगों ने सनम को और सर्च करना शुरू किया। एंड दैट इज़ हाउ जो ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियोस बनाते थे उनके भी व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और फैन फॉलोइंग जो थी वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लग गई। तो कुछ ऐसे ही गाने जिनके कि हम बहुत बड़े फैन हैं, 60s, 70s, 80s के सुपरहिट सॉन्ग्स जिनका कवर वर्जन बनाया है सनम द बैंड ने, वही यहाँ पर अभी आपको सुना रही हूँ। सुनिए ये अगला गाना, ये रात।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है
2: जी।
3: जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया
2: जी।
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थी।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था
3: जी। श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तक

0: तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना, जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है,
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे, जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया,
4: सर हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी, तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अभी थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत

0: विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
1: टैथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुन। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गई।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
3: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आमतौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
3: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
3: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं

0: समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं।

0: तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गईं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: व्यस्त रहो
1: वाल तारा खंबा ती सूतर फेड़ी गाल तारा सूरत निघारी राजकोट ना।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस मोटा पड़कार निवातो, नानकड़ा निर्धार निवातो। दुनिया ने देखाओ नहीं पण क्या कोई है निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवातो। कहानियों में भजवेला बहु अलग अलग किरदार निवातो। तमे जोई रहा छो वातो, वातो भी संजय त्रिवेदी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजी दिलबर। सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर। श्रोताओं, मैं हर एपिसोड में आपको कुछ ऐसी दिल के रिश्तों की कहानियां सुनाता हूं, जिसमें हमें अपनी जिंदगानी में वैसे ही माहौल में कैसे और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहिए, वो एक छोटी सी सीख मिलती है। और प्यार की बातें, प्यार की कहानियां हम साझा ही इसलिए करते हैं कि इन कहानियों की वजह से हमारे जीवन में भी प्यार बना रहे। और यही प्यार है जो आपको जिंदगी के साथ एक लगाव, एक जुड़ाव देता है। और उसी वजह से आप अपनी जिंदगानी में ऐसे मोड़ पर, जहां पर आप अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में प्यार बिल्कुल ही नहीं है, तब ये कहानियां आपने अगर सुनी होगी तो आप सोचेंगे, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। प्यार करने वाली चीज है, यानी कि प्यार हमारी ओर से होता है। प्यार का दूसरा छोर होता ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि प्यार का कोई अंत होता है, या फिर दूसरा छोर होता है, या फिर उसमें एक्सपेक्टेशन होती है, तो आप प्यार को समझ ही नहीं पाए। वैसे मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहता, पर आज मैं कुछ

किस्से और कहानियां ऐसे ही सुनाने वाला हो, जहां प्यार एक तरफा है ऐसा लोग मानते हैं, पर मैं और प्यार करने वाले ये कहते हैं कि सच्चा प्यार यही है। चलिए इस छोटे से विराम के बाद हम इस कहानियों के छोटे छोटे अंशों को सुनेंगे। कहीं जाइएगा मत, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

आंसू की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर। मैं हूँ आरजे दिलवर और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कुछ आज के एपिसोड में ऐसे प्रेम की कहानियाँ जहाँ पर प्रेम का मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। हम बात कर रहे थे एक ऐसे इंसान जो फैमिली मैन है, सबको प्यार दिया उसने, पर एक उम्र का तकाजा होता है। जब एक उम्र होती है, भाई बहन सब लोग उसकी हंसी ठिठोली मजाक सबको पसंद करने वाले अब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। अब उनके पास बूढ़ी माँ रहती है, अब वो भी खुद भी एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचा है, अकेला इंसान है। और ऐसे इंसान के पास जब माँ होती है तो वो कभी अपनी माँ को कोई किसी और नजरिए से देख नहीं पा रहा, उसे अभी भी वो अपनी माँ ही लगती है। और दूसरी तरफ माँ की उम्र अब दोगुना हो चुकी है, दोनों ही

चीजों के लिए एक उम्र हो जाने के बाद वो लड़का अपनी फैमिली के लिए अपने भाई बहन के तीज त्योहार पर कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम कर पा रहा है क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी अब उसको मना कर रही है, या फिर वो कहीं पे नहीं पहुंच पा रहा, या फिर कुछ पैसों वाली चीजों में भी होता है कि इंसान ये नहीं कर पा रहा, पर वो प्यार इतना करता है, वो केयर करता है, वो आज भी छोटी चीजों को संभाल कर उनके सामने पेश करता है, पर लोग उसे कहते हैं कि अब बस ये जमाना बदल चुका है। यहाँ तक कि बात उनकी माँ की आती है तब वो भी कहने लगती है कि बहुत हो चुका, अब आप हमारी केयर करते नहीं हो, आप केयर करो। तब उस इंसान के लिए जीवन में क्या महसूस होता होगा, ये एक सोचने वाली है चीज। ताउम्र उसने सारी चीजें की है प्यार के साथ, अपने पर्सनल प्यार को भी छोड़कर जो सबको पता है, पर अब ये हो रहा है कि कुछ चीजें वो नहीं कर पा रहा। तब इंसान उसे ये कहता है कि वो चीजें हमारे लिए पर वो इंसान जब तक जिया उसने एक लफ्ज नहीं कहा और सारी चीजों को वो उसी तरह से संभाल कर उनके लिए पेश करता रहा। पर आज उसके जाने के बाद उन फैमिली मेंबर्स को ये एहसास हुआ कि सच में हमें प्यार मिला था तो वहीं से। चलिए फिर मिलते हैं इस पड़ाव के बाद कुछ नई कहानी। मेगा

वेलकम बैक 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर एक ऐसी लड़की की कहानी है। छोटी सी ये कहानियां है, पर आप सोचेंगे कि रिश्तों में प्यार देना और प्यार पाना ये हरगिज किसी के लिए प्यार खत्म हो जाने वाली बात पर नहीं दिखता है। एक ऐसी लड़की जो अपने भैया को इतना बेइंतहा प्यार करती थी, उससे 2 साल छोटा था, उसके मम्मी पापा थे, पर वो ऑब्वियसली पैसे कमाने में मुंबई जैसे मेगा सिटी में इतने बिजी थे कि उसने अपने भाई को अपने बच्चे की तरह बहुत प्यार से नाजो से पाल कर उसे बड़ा किया था। उसका भाई भी उसे दीदी माँ कहकर बुलाता था। उसे भी यही लगता था कि माँ और पा हो ना हो, मेरे जीवन में मेरी दीदी होनी चाहिए। ये लड़की जब 20-22 साल की हुई तब उसकी शादी के रिश्तों को नकारती रही, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा मेरा प्यार बढ़ जाएगा और ये मेरा भाई जो आज भी अपने आप को अपने मम्मी पापा से इतना नज़दीक नहीं पा रहा वो क्या करेगा, क्योंकि उस वक्त उसकी पढ़ाई की, कॉलेज की, करियर के साल चल रहे थे। 6-7 साल तक वो अपने भाई से लगे इतने प्यार के रिश्तों को निभाने के लिए वो शादी नहीं करती है, और जब उसका भाई फॉरेन चला जाता है कुछ पैसे कमाने, कुछ अपनी लाइफ को बनाने के लिए, तब वही उसका सपोर्ट करती है, वही उसे कहती है कि तुम अपने आप को, अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ कि किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। और प्यार की दुआएं तभी भी वही रहती है। हर महीने उसकी चीज़ों को, जो इंडियन चीज़ें हैं, उसे पैसे खर्च कर कर भी वहाँ तक पहुँचाना, ईमेल लिखना, SMS देना, अच्छी बातों के लिए अप्रिशिएट करना, और वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि उसका आंसर आए। फिर क्या हुआ हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

होना तो वही चाहिए था कि वो लड़का वहां पर चाहे अपने पैरों पर खड़ा रह जाए, पर अपनी दीदी माँ को भूले ये तो हरगिज नहीं होना चाहिए। भूलना इन अ सेंस कि अपनी लाइफ की चीजों के डिसीजन के लिए चाहे पूछे ना पूछे, पर लिए हुए डिसीजन को शेयर करना तो नहीं भूलना चाहिए ना, क्योंकि उसके लिए भी लाइफ में प्यार क्या था वो चीजें तो समझाई उसकी दीदी ने थी। जब उसे पहली बार किसी से अट्रैक्शन हुआ था तभी दीदी ने ये समझाया था कि अट्रैक्शन क्या है, उम्र का पड़ाव क्या है, प्यार क्या है, रिश्ते क्या है और लाइफ लॉन्ग कोई रिलेशनशिप टिक जाए तब क्या होना चाहिए उसके लिए। पर हर बार ये मुमकिन हो ऐसा होता भी नहीं। आप सुन रहे हैं सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0, आज दिलवर के साथ कुछ किस्से, कुछ कहानियां, प्यार वाली, जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं है फिर भी एक तरफा प्यार बड़ी लंबी सी सीख दे जाता है। दोस्तों, वो लड़का वहां पर लाइफ में एक नई लड़की के साथ मिलता है, प्यार होता है, उसकी जुबानी ये कह सकते हैं उसके साथ शादी कर लेता है। 2 साल तक वो अपनी दीदी को बता नहीं सकता, या फिर बताने की चाह नहीं है, या फिर पता नहीं उसे क्या लगता है, वो बातें तो कम ही कर रहा था वहां जाने के बाद, पर वो उन्हें कुछ बता भी नहीं रहा था। और एक दिन जब उसका डिवोर्स होता है तब फूट फूट कर रोने की वजह से, अपने दिल को न संभालने की वजह से, वो अपनी वो वाली सिचुएशन की, जैसे हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई में रिजल्ट नहीं आता और आप फेल हो जाते हो, वैसी हाल में वो पहुंच जाता है। उसका फ्लैट ओनर

को संभालने छोड़कर वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे भाई को जरूरत है। जाने के बाद पता चलता है उसे कि अहम चीज भी उसने भाई ने उसे नहीं बताई थी। अब क्या कह सकते हैं कि प्यार एक तरफा था या फिर प्यार में कुछ कमियां थी? जी नहीं, वो लड़की ने अपने भाई को संभाला, समझाया। भाई ने कहा मैं वापिस आ रहा हूँ, मेरी गलती हो गई। वो कहती है कि नहीं, तुमने जो किया सही किया, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही है। वहाँ पर छोड़ कर उसे बूस्ट कर एक नई कहानी की ओर बढ़ाने की अच्छी वाली सीख देकर 6 महीने के बाद वो वापस आ जाती है। आ जाने के बाद उसके मम्मी पापा ने कहा कि हम इसीलिए कहते थे कि तुम अपनी लाइफ का सोचो, शादी कर लो, तुमने नहीं की। वो बोली कि ये मेरा डिसीजन था, उसका नहीं। प्यार मैंने किया, मुझे निभाना था और मैं निभा रही हूँ, मैं ताउम्र निभाऊंगी। और ऐसा ही मेरा दोस्त भी है जो आप 32 साल तक मेरी राह दे चुका है, मेरी राह तक चुका है। वो आज भी मेरे साथ शादी कर सकता है, पर हम दोनों का भी यही सोचना है कि बिना शादी के अपने रिश्तों को निभाकर अपनी जवाबदारियाँ जो एक कमिटमेंट की उसके पीछे लगाए। सुनेंगे ऐसी ही नई और व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

कहानियां बहुत सी होती हैं, और प्यार के लिए सच्चा प्यार क्या है और झूठा प्यार क्या है, असली क्या है नकली क्या है, ये लफ्ज मायने ही नहीं रखते। आप सुन रहे हैं सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0।

कहानियां मैं इसीलिए आपको सुना रहा हूँ जो मुझे किसी श्रोता ने भेजी है, अपने दोस्तों ने भेजी है या फिर मैंने कहीं पर महसूस की है, यानी कि सच्ची कहानियां हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक कपल जो जोड़ी है, लड़का और लड़की मिले थे वो अपनी जॉब के दौरान। जी हाँ, एक ही शहर में जब दो इंसान 12 घंटे जैसा वक्त अपनी ऑफिस में निकालते हैं, जब उनके जीवन में प्यार जो कहते हैं ना हम कि आकर्षण के रूप से शुरू होता है, वैसा वाला पनपे, उस पर कोई हम शक नहीं कर सकते या फिर हम उसके लिए कोई आश्चर्य भाव से नहीं देख सकते। और ऐसा ही हुआ, दोनों के दिल में प्यार की बातें, प्यार का महसूस होना ये लाजमी था। दोनों ने कभी भी अपनी सीमाएं लांघी नहीं, कभी भी ऑफिस का नेचर या फिर घर पे भी ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ जहां पर इसके लिए दिक्कत हो। दोनों घर के लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पर जब अपने बारे में सोचने की बात आती है, जब अपनी लाइफ को आगे ले जाने की बात आती है, तो क्या प्यार उसका मुकम्मल जहाँ शादी होती है, दो लोग साथ रहे ये इम्पोर्टेंट है या फिर पास रहे ये इम्पोर्टेंट है? ये वाली चीज आई इस कहानी में। हम सुनेंगे और जानेंगे कि फिर क्या होता है इस अच्छी चल रही कहानी में, क्या ट्विस्ट होता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

हम बात कर रहे थे दो ऐसे लड़के और लड़की की जिनका प्यार सबने एक्सेप्ट किया, दोनों ने अच्छे से उठना गोल्डन पीरियड भी उसको फील किया, समझे, लगा कि अब हम दोनों कंपेनियन हैं सारी चीजों के लिए। 6 महीने तक वो

दोनों के सपने, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट एक मोड़ था। लड़की को इसी देश में रहकर फैमिली के साथ जुड़कर एक बड़ी फैमिली का माहौल, तीज त्योहार का वो आनंद लेना था फैमिली लाइफ में, जबकि लड़का अपने और अपनी आने वाली फैमिली के लिए एक सिक्योर एक लाइफ ढूंढ रहा था जो फॉरेन में पॉसिबल थी उसके दिमाग के मुताबिक, या कम से कम 5 से 10 साल तक वहां पर जाकर कमाई करने के बाद रिटर्न आने की सोच थी। फिर दोनों के बीच में ये बात शेयर हुई जो पहले हुई थी। अब दोनों के दिल में प्यार कम नहीं हुआ, पर फ्रीडम वाली बात यहाँ पर आई कि आप अपने तरीके से लाइफ में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब ये डिसीजन कैसे लिया जाए, और दोनों ने लिया। दोनों ने कहा कि हमारा प्यार बरकरार रहेगा, पर हम साथ में लाइफ इस तरीके से नहीं जी सकते। लड़का पहुंचा फॉरेन अपने करियर को लेकर, उसने वहां पे बूस्ट किया, 8 साल तक जॉब की। लड़की ने यहाँ पर भी अपने करियर को एक उफान की तरह बड़े से स्टेज पर ले गई, और उसके बाद जब दोनों वापिस 8 साल के बाद मिलते हैं, तब उन्हें लगता है कि क्या जीवन में शादी ही मुकम्मल जहाँ है हर प्यार की। वो सोचते हैं कि कुछ अपने लिए भी जीना चाहिए, कुछ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, और कुछ अपने सोचे हुए इरादों को मुकम्मल जहां देने के लिए भी जीना चाहिए। 8.5 साल के बाद वो वापिस जुदा होते हैं, और वापिस 2 साल के बाद मिलते हैं, तब शादी होती है उनकी। और वो शादी भी ऐसे ही थी कि 6 महीने लड़का इधर आता था और 3-4 महीने लड़की वहां पर जाती थी। पर आज भी प्यार में कोई कमी हो ऐसा किसी भी फैमिली को महसूस नहीं हुआ। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं था, पर ये था कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसकी ख्वाहिशों को भी तवज्जो देना सीखें। प्यार में तो यही है, उसके लिए सब कुर्बान नहीं, उसके लिए जो हो सकता है वो करना चाहिए। बात को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

आंसू की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 ऊपर। मैंने कुछ ऐसी कहानियां सुनाई कि जहां पर प्यार का मायना बदल जाता है, प्यार का मीनिंग बदल जाता है। किसी के साथ भाग जाना, किसी के साथ अच्छा रहना, किसी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ये प्यार नहीं है। आपने किसी के लिए क्या किया, और वो भी जिसके लिए आपको प्यार है, और उसका भी एहसास उसको हो ना हो, बस आप उसकी मस्ती में रह पाए, यही तो

जिंदगी में प्यार है, राधा का प्यार है, मीरा का प्यार है, एक सुदामा का प्यार है, और सुदामा की ओर कृष्ण का, नरसिंह की ओर कृष्ण का प्यार। और इसी बात को समझाते हुए मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो प्यार का ये मायना भी सोच के देखिए कि उसके लिए, उसकी ख्वाहिश के लिए सब कुछ नहीं करना है, पर जो आपसे हो सकता है वो करे, और उसे कभी ये न लगे कि प्यार की बेड़ियों में वो बंधा है, प्यार की खुशबू में वो सजा है, ये रखना चाहिए। ऐसी बातें आपके आसपास भी करती होगी, आपने भी सुनी होगी, आपने देखी होगी, तो आप मुझे भेज दीजिए 9512996688 पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, ईमेल radiopalanpur@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड और आईफोन के लिए है, आप उसे रेडियो पालनपुर लिखकर खोज कर डाउनलोड कीजिए, उसमें भी कमेंट बॉक्स है और उसमें भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप हमें पूरी दुनिया में सुन सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और आप रेडियो गार्डन पर जाकर नॉर्थ गुजरात के वो पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको सुनाई देगा रेडियो पालनपुर, आपकी अपनी आवाज। तो दोस्तों अलविदा, अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही रूहानी कहानियों को लेकर मैं वापिस आऊंगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: मस मोटा पड़कार निवातो, नानकड़ा निर्धार निवातो। दुनिया ने देखाऊ नहीं, पण क्या कोई है निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवातो। कहानियों में भजरेला बहु अलग अलग किरदार निवातो। तमें जोई रहा छो वातो, वातो विथ संजय त्रिवेदी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

कितने मजहब कितने धर्म है, कितने मजहब कितने धर्म है, कितने मजहब कितने

0: लाख होती है मगर मोहब्बत कम नहीं होती। क्या खता हुई मुझसे जो खत आना बंद है, रेलवे हड़ताल है कि डाकखाना बंद है। ये दोस्त तेरी दोस्ती मिसले अंगूर है, मिलने को जी चाहता है लेकिन रास्ता बहुत दूर है।
1: वाह वाह वाह वाह, अबे अपने जता जता पेलु खंजरी जे आवाज आवे छे ने थोड़ो तमे साथे साथे गाई पण लो छो, ए आपणे आपणा जे लिसनर છે એમને સંભળાવવાનું બિલકુલ નહીં ચૂકીએ। તો આપણે જતા જતા લાસ્ટમાં

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।